0: ഹലോ എയർ ഇന്ത്യ,
1: എയർ ഇന്ത്യ, വാട്ട്? There is a time bomb in flight number 125. Hello, who is speaking? कहां से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello, hello. जबर, इसी ने फोन पे बताया कि flight number 125 में time bomb लग गया. What?
2: No, that's it, man.